Kathina ave tot kat kat kati koti kot kot de da de ren de thak pai chuga chuga ter khai khai hukmi hukum chilaye rao nanak vikse ve parvao sacha sahib sachna pakhya pao apar akhe mange dev de tat kare datar sher ke age rakhiye chete se darbar मुँह के बोल न बोलिए चित सुन तरे त्यार अमृत वेला साचना वड्याई विचार करमी आवे कपरा नदरी मोख द्वार नानक ए में जानिए सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोय जिनसे व्या तिन पाया मान नानक गाविय गुनी निदान काव्य सुनिय मन रखिए पाओ तुक पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेद गुरमुख लया समाय गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माय जेहो जाना आखा नाय कह ना कथ न जाए गुरा एक देव जाए

The Spirit. सत्संग जी हिम्मत सिंह जी जे दस्तार से जा रहे ने उनके मामा जी मनिंद्रपाल सिंह बेअंत सिंह जी दस्तार से जा रहे ने उनके मामा जी जसप्रीत सिंह ये साड़ी कल्चरल ट्रेडिशन है कि जड़ा मामा हुंदा अंकल हुंदा मटरनल अंकल वो दस्तार से जांदा

रहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धां पुरखां कियां वड्याइया। तुद बिन सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।

नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हारु हारु हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन

शैल पत्थर मह जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया ऊडे ऊडावै सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख।

जिन हर निर्भउ ते आया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ते आया जी, जन नानक तिन बल।

तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तपह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवन अवर न कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन ना

सब नी ध्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़े आप मिलाया।

अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख लिहु मुहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का

तहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायू, देव दैत जक्षन उपजायू, आदंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा।

पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

गुरु नाऊ सतगुर सेती रत्या दरगह पाई ठाऊ कहो नानक किरपा करे जिसनु एह वच दे जग मह।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी साहे वाचपोती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें आवाताए सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार का ध्यान करके घर सच बोलो जी वाहे गुरु गरीबनवास आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां जपियां जिन्हें नाम जपया बन छकया देख चलाई ते वाहे देख डेढ़ किया तना प्यारे त्यारे की कमाई दर्ज अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंघा सिंगड़िया धर्म हे सी दिते बांध बांध कटवाए कोपरियां लुआईया चरकरिया के चढ़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सी किसी देखे सत्संग निभाया तिना भी कमाई दर्ज अंतर के बोलो जी वाहे गुरु पहना चाहान गुरुद्वारे दर्ज अंतर के बोलो जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाम चिता है चित आवन का सद का सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तहन चरियात देख देख की फतेह ब्रज की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबल ने बोलो जी वाहेगुरु सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु सिखां दा मन नीवा मत उचे मत बद के राखे आप वाहेगुरु गुरु की बनवाए पंथ सदा श्राइजियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों को आप जी पंथ रूप छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दार सेवा समाज दान अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसर ने आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दारजियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास एक महाराज आप जन करना दास में जाज बख्शो आप जन पित्र रवानी सुखमी साहब ने समूर पाठ दता ऐस वे सजा समा जान के सोधर रह साठ पाठ की तेरी कृपा करो भूया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान कुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदय निशानी की बात करो जी अगो तो शो से पित्र बाणी चाली बल बुद्धि बख्शिश करो कि महाराज इस खुशी में आप दिए बख्शिया दाता पित्र ग्राम चाली देगा तैयार करें हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पित्र नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देव प्रदेह रखा बख्शिश करो जी की आज आपके बख्शिया दाता ने नगर तुरंत सवारी प्रवान कर दी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैलियां सिंह सिंगड़ियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटीकर बख्शो सदा ही सदर अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो गरीब रवाज बख्शिश करो अमृत वेले तो लैके दाते आई सब संगतों की आदि दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगतों का दर तिर फुट पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु की बुराई कृपा करो दूर दराज कर बैठिया लाइव कितना किसी शर्म कर रही सारी संगतों की आदि प्रवान करो घड़िया लेके लाओ सताराम ने कृपा की संगतों को बख्शे ने संगत आपके चरण धनवाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा सिंह अवतार संगत माया भेटा कर चरना प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सबर करो घट वाद अवतार सब संगतों दुभकामना सबना पूरी करो जी तार मेहर करो मेहनत कर आओ सेवा प्रवान करो भुलत भाई बख्शो पवित्र हुक्म नवी बख्श करके बरा अज दिशा ने कीर्तन दरबार रमता वास आग्ञा बख्शो रेंदे घर सुवार के चना तला बनाओ कई प्यारे मेरे जिले मेरा आपका नाम चता नानक नाम चढ़ी करा तेरे वाहेगुरु जी का खालसा

गुरु प्यारी साध संग जी, आओ मन अपना गुरु चरणा विच जोड़िए। सतगुरां दी बख्शी फतेह बुलाओ, कोई भी रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ कुछ समय देखिए गुरु चरणा विच हाजरियां लवाइए जी।

कहना ही नहीं, महसूस करना है। सतगुरु जी की शख्सियत नूं, उन्हां दी इमेज नूं सुरत विच लियाओ, प्यार नाल अंदरों आखो,

0: आओ जी
1: रल मिल बैठण दा सुभाग मिलिया है, मन जोड़ के सारे बैठिए, वड्डी गिणती विच सजे हो, बाकी संगतां आ भी रही हैं, जिथे जगह मिले प्यार नाल सजदे जाइए ते नाल नाल गाविए सुनिए समझिए और अपनी जिंदगी विच लागू करने की कोशिश करिए। संगना नहीं चाहिदा, जदों मौका बने नाल रल के गायन करीदा, गुरु जी के कीर्तनीय बनीदा, गुरबाणी के कीर्तनीय बनीदा। जदों सारे आपां कीर्तन करदे आ गाउंदे आ फिर सारे कीर्तनीय कीर्ति करिए। रागी राग गाउंदे हन पर वो कीर्तनीय उदों बनदे ने जदों राग विच कीर्तन गाउंदे हन। कीर्ति करन वाले नू कीर्तनिया कहा जांदा, भलो भलो रे कीर्तनिया, जिहड़ा कीर्ति करदा वाहिगुरु दी। जिवें गाया जावे गाना चाहीदा, आले दुआले वल वेखो, नाल आलियां नाल सुर मिलाओ, कल्ले ही अपने हिसाब नाल नहीं, कोशिश करके प्यार नाल सारे गाइए, कोई रसना वांझी ना रवे। वाहिगुरु जी तेरा रंग, तेरा प्यार दा रंग, तेरे नाम दा रंग बड़ा सोहना रंग है। जिस विच मेरा शरीर रूपी चोला, मेरा मन रूपी चोला भिज गया है, भिज रहा है, भिज जाएगा, इस प्यार विच पाउणा है फील नाल। फील नहीं मरण देनी, आले दुआले नहीं वेखना कौन आया कौन गया, मन जोड़ के बहना, हिलना नहीं। कुछ सज्जन ते ये भी कोशिश करियो भी हाथ पैर भी ना हिले, गोडा मोडा उंगल कुछ ना हिले, पत्थर की मूर्ति बन के बैठो। जिन्ना शरीर एक रस बिठाओगे उन्ना ही आनंद बनता। दूसरा, अकड़ा के नहीं बहना, शरीर ढिला छड़ के बस बैक सीधी रख के बैठना है। तो कोशिश करो हिलिए ही ना, बिल्कुल अखां भी बंद रहन, कोशिश करिए। इतों यह पता लगेगा साडा साडे ते किन्ना काबू है। मन लो, हुण अपने मन नूं कहो भी मना 15-20 मिनट अखां बंद करके बिना हिले बहना है। साडा सारिआं दा रौला यह है, साडे बच्चे आखे नहीं लगते, साडा फलाना आखे नहीं लगता, साडा फलाना आखे नहीं लगता। बाकियां दी गल बाद च करांगे, वेखदे आं मन किन्ना चिर आखे लगता। आपां इहनूं आख्या है कि 15 मिनट अखां बंद करके बैठ, पर मन आखे लगता है कि नहीं लगता, इहदा पता ते कर लईए। अपना आप साडा नहीं सुणदा, असीं दुनिया ते कंट्रोल करदे आं। ते गुरु जी कहिंदे आ मन जीते जग जीत। जिन्हां ने मन जित लिया उन्होंने जग जित लिया। साडा मन ही साडा जगत है ना, संसार साडा साडे अंदर ही, इहनूं काबू कर लो सारी दुनिया ही काबू है। साडी दुनिया ही साडा अंदर है, जो बाहर वेखदे आ उहनूं फील असीं अपने अंदर ही करदे आ। इस करके वेखिए किन्ना चिर साडा मन टिकदा है, किन्ना चिर असीं बिना हिले बह सकते। जे माड़ा मोटा हिल गया फिर अखां बंद कर लियो, फिर चौंकड़ा ला लियो, फिर एक रस बैठण की कोशिश कर लो। गुरु नानक साहब जी का शब्द है,

ऐसा रंग चढ़दा है वह फिर छड्या नहीं जाता, मन विच एक सहज आ जाता है, मन च एक टका बन जाता है, छड़िया नहीं जाता। अज जिथे असी करी बैठे हैं अज छड़ लो कल छड़ देंगे, अज जिन्ने भी आप बैठे हैं ना गुरमुखो अज असी हैगे हैं, पर घरां दे विच हौली हौली करके जिवें जिवें बुजुर्ग होई जाओगे, बापू जी जरा साइड ते होयो, क्यों कहिंदे फोटो खिचा लीए, बापू साइड ते होण लग जाणा है, परिवार दा मुखी सी किसे वेले, हुण लाणेदार होर हो गया,

वाह वाह, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ऐसे सतगुरु जेड़ा उन्हां दा इतिहास पढ़ता है, इस्लाम धर्म विच होण दे बावजूद भी अज भी मस्ताना होके कहिंदा गुरु मंजूर है, ये गुरु मैनू पुछदे ने तेनू कबूल है, तेनू मैं मंजूर है। कहिंदे सानू गुरु गोबिंद सिंह मंजूर है। इतिहास पढ़ के पढ़न वाले, महाराज की हिस्टरी पढ़न वाले ये कहिंदे उदों ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप सन, सतलुज का कंडा सी, हजारां संगतां दशमेश जी के दर्शन करन वास्ते आउंदियां, निहाल हुंदे, प्यार करन वाले जदों वापस जांदे खुश हो के मस्त हो के जांदे, तां गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन दीदार करके बेड़ी सतलुज दा दरिया दे विच बहुत सारे मलाहां ने अपनिया अपनिया बेड़ियां पाईयां होईयां ने, उधरले पासे तो कंडे तो किसी नूं इधरले पासे ले आउणा, इस कंडे तो चुकना दूजे पासे ले जाना, मलाह जिहड़े ने वह अपना जीवन निर्वाह करदे आ। इत्थे जिवें टैक्सियां चलदियां ने, लोग इहदा बिजनेस करदे आ, कम करदे आ, किसी नूं एक थां तो दूजे थां ते पहुंचा देना, मुड़ के अगला पैसे दिंदा कोई $100 कोई $200, वो जिवें अजकल सिस्टम है, वह बेड़ी है, कोई पुल है नहीं, बेड़ी है, बेड़ी दे विच लोग बहिंदे ने हत्थां दे नाल, इदां हत्थां दे नाल चप्पू मारने पैंदे ने, इस किनारे तो दूजे किनारे लै जांदे है, उधरले पासे तो मुसाफरां नूं बहा के इस किनारे ते लै आउंदे है। इदां बहुत सारी संगत नूं एक दिन विच बहुत सारिया बेड़ियां च बिठा के मलाह एक कंडे तो दूजे कंडे लैके जांदे है। बहुत सारे मलाहां दे विच एक बड़ा गरीब जिहा मलाह जिहदा नां लिखिया इतिहास विच सैदा, गरीब जिहा बंदा, छपरी कानियां दी पाई हुई है, बड़ा सुकून वाला है, परिवार पालदा है, बच्चे पालदा है, बेड़ी इन्हें भी एक पाई हुई है, छोटी जी इहदी बेड़ी है, बाकियां नालों छोटी है, ते जदों भी संगत ने उहदे विच जाना धन गुरु गोबिंद सिंह दीयां सिफतां करनियां, आउंदियां भी जांदियां भी संगतां ने शब्द पढ़ने, धन कलगी धर जी की वड्याई करनी, पातशाह की सिफत सलाह करनी। कई बारी संगतां ने पुछना सैदिया तू कदी दर्शन कीते ने, ते सैदा कहिंदा मैं कलगियां वाले दे दर्शन ते नहीं कीते, हां उन्हां दे दर्शन रोज करदा जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन करके आउंदे, जिहड़े रोज दीदार करके आउंदे, उन्हां वल वेख वेख के निहाल हुन्ना, मैं अजे दर्शन नहीं कीते। सैदिया तू क्यों नहीं दर्शन कीते? कहिंदा मैनूं समां ही नहीं लगा, मेरे बच्चे ने छोटे, मैं रोज कमाना, एक टाइम का खाना अपने बच्चों नूं खवा सकदा, ते मैं चाहुंदा भी कदे कोई समां बने ते मैं गुरु गोबिंद सिंह दे रज रज दर्शन करां। मजबूर हो गया, अजे तक इन्नी कमाई नहीं कर सकिया कि एक दो दिन वास्ते मैं छड़ के बेड़ी चलिया जावां ते मैनूं मेरे बच्चे बाद च भुखे मर जाएंगे। ते मैं सुनिया है कलगियां वाले कहिंदे ने अपने परिवार नूं पालना सांभना ये बंदे दा कर्म धर्म है, साडा कर्म मैं अपना प्यार नाल करदा, कोई गरीब गुरबा आउंदा नहीं भी कोई पैसे दिंदा मैं तां भी खुश हो जांदा, पर मैं अजे तक दर्शन नहीं कीते। एक प्यार वाला सज्जन जांदा जांदा कह गया सैदिया तू नहीं गया? कहिंदा नहीं गया। फिर कहिंदा इदां कर, तू नहीं जा सकदा, कलगियां वाले ते आ सकदे ने ना तेरे कोल, आ ते आनंदपुर साहब है। ते कहिंदा बाजां वाले मेरे कोल किवें आ जाणगे ते क्यों आ जाणगे? ओह कहिंदे आ जाणगे। फिर मैं करां की? कहिंदे अरदास करिया कर, बेनती करिया कर कि सच्चे पातशाह मेरे ते कदी कृपा करो, अरदास करिया कर। आयो पातशाह

0: अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों
1: तन माहे मिटावो
0: सिमरों जासु दिसंबर इक
1: नाम जपत अगंत।

0: सिमरै जिने आप सिमराए,
1: नानक ता कहला गो पाए,
0: रब का सिमरन सब ते ऊंचा,
1: रब के सिमरन उदरे मुझा,
0: रब के सिमरन तृष्णा बुझे,
1: रब के सिमरन

0: नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरह से तनवंते
0: प्रभु को सिमरह से पतवंते
1: प्रभु को सिमरह से जन परवान
0: प्रभु को सिमरह से पुरख प्रदान
1: प्रभु को सिमरह से बे मोहताजी
0: प्रभु को सिमरह

0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभु के सिमरन निश्चल आसन,
1: प्रभु के सिमरन कमल वेगासन,
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार।
0: सिमरह से जन जिनको प्रभु मया,
1: नानक तिन जन सरनी भया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाए,
0: हर सिमरन भये सिद्ध दति दाते,
1: हर सिमरन नीच चोह कुंट जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिमर हर कारण करना,
0: हर सिमरन की सगल अकारा,
1: हर सिमरन मैं आप निरंकारा,
0: हर कृपा जिसे

0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सगल के आगमन मध्य फिरिया
0: अनेक प्रकार किए।

0: सज्जन को ब्रह्मदर्श बेहसा,
1: नानक ताके बल बल जासा,
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान,
1: साध संग जाका मिटे अभिमान,
0: आपस को जो जाने नीचा,
1: तो गणिया सब ते ऊंचा,
0: जाका मन होए सगल की रीना,
1: हर हर नाम दिन कट कट चीना,
0: मन अपने ते बुरा मिटाना,
1: एक है सगल श्रेष्ठ साजना,
0: सुख दुख जन समृष्टिता,
1: नानक पाप पुन नहीं लिपा।

छोड़ जाए जिसका श्रम करे, चंदन लेप उतारे तुहे, अंधकूप में पतत बिकराल।

0: तो समझे पूरा।
1: कहा विष्ण पद गावै गुंग,
0: यतन करे तो भी सरभंग।
1: कह पिंगुल पर्वत पर पवन,
0: नहीं हो तू आस गवन।
1: करतार करुणा में दीन बेनती करे,
0: नानक तुमरी कृपा करे।
1: संग सहाई

0: दृढ़ कर मन मन प्रतीत
1: बैर
0: विरोध काम क्रोध मोह
1: विकार मानो
0: याहू जुगत बिहाने।

0: शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अश्वरी
1: यह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
0: इस ठाकुर को रख मन माहे
1: यह प्रसाद सुगंध तन लावे
0: इसको सिमरत परम गत पावे
1: यह प्रसाद वसे सुख मंदर
0: किस हित आए सदा मने अंदर
1: यह प्रसाद ग्रह संग सुख वसना
0: आठ पहर सिमरहु तिस रसना
1: यह प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याई त्यावन जोग
1: यह प्रसाद पाठ पटंबर हलावे
0: किस हित कतवर लुभावे
1: यह प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
1: यह प्रसाद सबको मन
0: मुख ताको जस रसन बकाने।

0: देह प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावह हर हर जस कहत,
0: देह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके,
1: मन सरनी पार ठाकुर प्रभता के,
0: देह प्रसाद तुझको न पहुँचे,
1: मन साथ साथ सिमरहु प्रभु उच्चे,
0: देह प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताकी भगत करे।

0: जिनते री मनवंत बनाई
1: उठत बैठ सत सहते आई
0: सहते आए जो एक अलख है
1: इहा उहा नानक तेरी रख है
0: जे प्रसाद करह पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जे प्रसाद

0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर सी।
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।

0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के ओए सो फला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के इक्के रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवे आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।

0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या ना जाए दाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता।

0: के नेत्र
1: साध की टहल से संत संग हेत
0: करन न सुने काहू की निंदा
1: सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिखिया पर हरे
1: मन की बासना मन ते टरे
0: इंद्री जित पंच

0: नानक वैष्णो परम गत पावे
1: रोती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागै दुष्ट का संग
1: मनते विनसै सगला परम
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत।

0: कई कोट जन्म है जी वह मर है
1: कई कोट बो जो नी फिर
0: कई कोट बैठत ही काहे
1: कई कोट काले तक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में जिंत
0: जह जह पाणा तह तह राखे
1: नानक सब कुछ प्राप्त कह हाथे
0: कई कोट भय बैरागी
1: नाम नाम संकन लागे
0: कई कोट प्रभ कौ खोजनते
1: आत्म में पार ब्रह्मलोके
0: कई कोट दर्शन प्रप्यास
1: इनको मिलियो प्रभुनाथ
0: कई कोट मांगे सत्संग
1: पार ब्रह्म तन लागा रंग
0: जिनको हुए आप सुप्रसन्न
1: नानक ते जन सदा धन्य।

0: समान कछ संग न जावे।
1: बहु लश्कर मान को पर गरियास,
0: पल पीतर ताका हुए विनाश।
1: सब ते आप जन बलवंत,
0: इन में हुए जाए पसमंत।
1: इसे न भजे आप अहंकारी,
0: धर्म राय किस करे खुआरी।
1: गुरु प्रसाद जाका मेरे अभिमान,
0: जो जन नानक दर गए परवान।
1: कोट कर्म करे हों तारे,
0: पावे सगले बिरतारे।
1: अनक तपस्या करे अहंकार,
0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार।
1: अनक जतन करो आत्म नहीं द्रव,
0: हर दरगह को कैसे गवै।
1: आप उसको जो भला गावे,
0: इसे भलाई निकट न आवे।
1: सर्व की रेंजा का मन होए,
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए।
1: जब लग जाने मुझते कछोए,
0: तब इसको सुख नहीं कोए।
1: जब ही जाने मैं किस करता,
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता।

0: अष्टवारी संत कै दुखन आर जाकट है,
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत कै दुखन नरक में पाए,
0: संत कै दुखन मत होए मलीन,
1: संत कै दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान पृष्ठ होए,
0: संत कृपाल कृपा जी करे,
1: नानक संत संग नंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन कै दुखन काग जोड़वे,
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत कै दुखन त्रिक जोन करमाए,
0: संतन कै दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब कुशल है।

0: या पे प्रतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: किसते बिरथा कोई नाही
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अबनासी प्रभ मन आपे आप
1: आपन किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लो चेक होए
1: जिस बिन नाही तेरा किछ काम
0: कत नानक जपे घर नाम।

0: रहे अजान
1: कौन बस्त आई तेरे संग
0: लपट रहे रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पतसेती कर जाहे
1: जिस बखर को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तज अभिमान

0: अब किस दिसका ओह करन जोग,
1: किस बिन दूसर हुआ न होग।
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी,
1: सब ते ऊच निर्मल करनी।
0: कर कृपा जिसको नाम दिया,
1: नानक सो जन निर्मल थिया।
0: जाके मन गुर की प्रतीत,
1: किस जन आवे हर प्रभु चीत।
0: भगत भगत सुनिए देह लोए,
1: जाके हृदय एक हुए।
0: सच करनी सचता।

0: अनेक उपावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर हरकत लाए
0: सर्व निदान मैं हर नाम निदान
1: जप नानक दरगह परवार।

0: बंधन काट मुक्त जन भया,
1: जन्म मरण दोख भ्रम गया,
0: इच पुन्नी श्रद्धा सपूरी,
1: राव रहया साध संग हजूरी,
0: इसका साथिन लिया मिलाए,
1: नानक भक्ति नाम समाए,
0: तो क्यों बिसर जे काल न पाने,
1: तो क्यों बिसर जे जी किया जाना,
0: तो क्यों बिसर जिन सब किच दिया,
1: तो क्यों बिसर जे जीवन जिया,
0: तो क्यों बिसर जे अगन मह रख है,
1: गुर प्रसाद को बिरला लख,
0: तो क्यों बिसर जे विख ते काट है,
1: जन्म जन्म का टूटा गांड,
0: गुर पूरा तत एह बुझाया,
1: प्रभु अपना नानक जान ध्याया,
0: साजन संत करहु इहु काम,
1: आन त्याग जपो हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावहु,
1: आप जपो अवरह नाम जपावहु,
0: भगत पाई तरी है संसार,
1: मैं भक्ति तन हो सी शार,
0: सर्व कल्याण सुख नित

0: मित्र भेख दर्श सुख होए,
1: मन बिगसा साध चरण धोए,
0: भक्त जना कै मन तन रंग,
1: बिरला कौ पावै संग,
0: एक वस्तु दीजै कर मया,
1: गुरु प्रसाद नाम जप लया,
0: ताकि उपमा कही न जाए,
1: नानक रहया सर्व समाए,
0: रब बख्शंद दीन दयाल,
1: भक्त वछल सदा कृपाल,
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल,
1: सर्व कटा कर्त व्रत पाल,
0: आदि पुरख कारण करतार,
1: आदि जना के प्राण दार,
0: जो जो जपै सो हुए पुन।

0: सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए,
1: एक निमकार के गुण गाए,
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई,
1: आपके नाम की कथा मन पाई,
0: बहु भोजन कापर संगी।

0: जब आकार एहो काच नांद रह केता
1: बापुन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सोंद समाध
1: जब बैर विरोध की संत मात
0: जब इसका वर्ण जहन न जापत
1: तब हरख सो कह किसे व्यापत
0: जब आपन आप बार ब्रह्म
1: तब मोह काह किस होवत परम
0: आपन खेल आप वर्तीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभु के वरदाने
1: तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: तब नरक सुरक कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: तब शिव सकत कहो कित ठाए
0: जब आप है आप अपनी जोत तरा
1: तब कवन निडार कवन कत डरे
0: आपन जलत आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अपनासी सुख अपन आसन
1: जन्म मरण कहो कहा बिना सुन
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस हुए
0: जब अवगत अगोचर प्रभु का
1: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर गाधे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाते
0: अपने आप ही अचर जा
1: नानक अपन रूपा भी उपर जा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पात होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्बाण
1: तह कौन कुमान कौन अभिमान
0: जय

0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कार्य पूरा
0: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन बेगत उद्धत श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सकल दर्शन सुंदर।

0: पदे
1: संगंत्र प्रवडिटा
0: प्रभु का लगा मीठा
1: सगल सामग्री एक कट माही
0: अनक रंग नाना देशा है
1: नव नित अमृत प्रभु का नाम
0: कुल
1: समाद अनहत तैना
0: अचरज बदमाद
1: दिन देखिया जिसे आप दिखाए
0: जन सो जी पाए
1: तू अंतर सो बाहर अनंत
0: व्याप रहा भगवंत
1: धरण माही आकाश पयाल
0: सर्वलोक पूरन प्रतपाल
1: वन तीन पर्वत है।

0: अनुमानत
1: मोड़ काज भेद न जानत
0: महादेव को कहत सदा सेव
1: निरंकार का जिन न भव
0: आप अपनी बुद्ध है जीती
1: वर्णन बहन बहन।

तुझ शब्द में राज करेगा खालसा आकी रह न पार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो

विखम नदी जाए तरणी सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

सच्चे त्रिकरण सच्चे ब्राह्मण सच्चे त्रिलो सच्चे आकार सच्चे त्रिकरण से विचार सच्चा त्रमण सच्चा दिवान सच्चा त्रावकम सच्चा।

जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गोद का निघ मान रही गुरु रूप साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का ही कीर्तन दरबार जो नवे साल की आमद से करवाया जा रहा है, इस विच रूहानियत दे सोमे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी जत्थे आप संगतां नूं गुरबाणी

0: कीर्तन करते हैं। एक नहीं अनेका बोला हूँ, सतगुरु जी बख्शनी योगान संगत बख्शी बख्श ले। आओ साडे पंते बहुत ही सत्कार योग संत बाबा रणजीत सिंह जी आ चुके हैं, आपां उन्हां कोलों शब्द कीर्तन विचारा सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ऐसे ही भाई साहब जी दा जत्था जिन्हों ने सानू लाही वाणी का कीर्तन सरवण करवाया है, हुण भाई साहब रणजीत सिंह जी आप अपने कीर्तन जत्थे दे नाल आप जी नूं कीर्तन सरवण करवाणगे। एक होर बेनती है कि एक भैन जी का फोन मत्था टेकते हुए गवाच गया सीगा, वह मेरे को लेते हैं, वह मेरे को आके लै सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे कवन कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं कछु पारे लाख लाख लाख कई कोरे

आओ गुरमुखो सारे रल के गुरबाणी कीर्तन करते हाँ। कोई रसना वाली ना रवे आप सारे साथ दियो। साहिब गुरु अर्जन देव महाराज का शब्द आप पढ़ते हाँ। बेनती है जिथे जिथे जगह मिले प्यार नाल सजना सजे हो ते सजे रहना है। जदों सारी संगत विच एकाग्रता भी होवे टिक के बैठे होइए बड़ा माहौल का असर पैंदा है। उस माहौल दे विचों कईयां दी जिंदगी बन जाती है। लाइफ विच टर्निंग पॉइंट आ जाता है, लाइफ बदल जाती है। ते सारे रल के माहौल बनाओ, मन जोड़ के बैठो, पढ़ो नाल गाओ ते टिक के बैठण दा मन बनाओ कि आप हाजिर हो के बहना है। थोड़े मिनट कीर्तन करते हाँ, फिर कुछ विचारा करते हाँ। साथ देना है जेड़े जेड़े अपने गुरु जी नूं प्यार करते हो, पहला ये महसूस करो। जे तुहाडे अंदर कोई स्पिरिचुअल बख्शिश होई है, कोई रूहानियत, कोई अध्यात्मकता दा कोई रस बनया, तां अपने गुरु जी नूं शुकराना करदे आ। ये शब्द गाओ, चाहे बाहरली मटीरियल करके असी पैसे करके सुख सहूलत करके सैटल होए हैं, कोई भी बख्शिश जिंदगी च होई है उन्हूं लियाओ सामने ते फिर शुकराने का भाव मन विच पैदा करो। उस इमोशन दे विच गाईदा, फील विच गाईदा। इमोशन बिना कोई कीर्तन नहीं हुंदा, ना सुनन दा ना सुनाउन दा। कीर्तन का मतलब ही इमोशन पैदा होवे, फील बने, फील बनाओ, यतन करो। जे असी सतगुरु दियां

来日，来日，来日，来日，来日，来日，सारे बोली जाओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे